0: பரவசம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்க. ஒலி 9:08 கேட்டாலே பரவசம்.
1: கோகலா ची पाकी जुमेरात आईए जेड़ा आज भी ना नचे ओदी शामत आईए कोकला ची पाकी जुमेरात आईए जेड़ा आज भी ना नचे ओदी शामत आईए कोकला ची पाकी जुमेरात आईए जेड़ा आज भी ना नचे ओदी शामत